0: मैटुओ गोबां केमानथगो भिटामिन ए भिटामिन बी भिटामिन सी ते अबनो करीबो कैल्शियम लोहा आकरबो मानथगो दाल बिदाल जातनि बिसिंगो मैटु तंगो पानी मैटु मुखी मैटु पंचमुखी मैटु दूध ताय उल मैटु वाते एबा तै कलाइ तेतेखे रमै नारगै माननाय आबो हाय थायरगो एबाके सुक्ष्र स्र आबहाय थायरगो आबनो करीबो हा सिंदिल बाय हा केपेक सापुलो जागो मैटु काखेके बेलायकेनो हामसुगो मैटु कायनानि सिखांगानो आल वाइनि वाइ थामसे काहाम किसुआयै सकाम रक्सावै हारपे ख्लाय सुगै नाहारमानि उलनो मैटु कायनानि नांगो आल सुआय फुरुनो नांमानि जरातै सारक रेनानि नांनाय आबनि बिसिंगतंगो हेक्टर कायसाओ मुस्कि नांगो सीटन यूरिया नांगो सेर साराबासी टीएसपी नांगो सेर सारा नैजिबा एमओपी नांगो सेर साराबासी जिप्साम नांगो सेर चुकुसी दसता नांगो चारसी मैटु गायनायनि बागै हाक सालांनानै नांगौ सेन्टिमिटार दक्सि ते हाखर कुथु केबें कुवार होननानै नांगौ सेन्टिमिटार दक फांसारा गायनायनि बागै हेक्टर कायसाव नांगौ थामजि स्नि साय मैटुनि या फांग तुमुं जाब्रा बब्रा रग दंहाखै आबो साफ सुथ्राखै मातनि नाय चारा कायमानि जे तरिया साग सेन्टिमिटार नै नि सिमि बा तै गोसारै मातनि नाय लेदा ताय माकर होनै यं तंग आबो बलाय सावै मैटुनो देरारुओ आबोनि बागै तालफिल मा खालायनाय साल दग सिनि सिमि सुकुसि नि बिसिंगनो लति खलैमानो तै साल सारा ब्रैजिनि सिमि सारा दक्सि नि बिसिंगनो मैटु बकं खलैमानो तुमनो कताल रायदै खलायना दंखाखै मैटु हेक्टर कायसाव थामजि टन मानो तै लति मानो सि नै टन आसुजारा मैटु गायमानतै थाइजाथानि कक खाना लायखा
1: आउफारीके ताबुक सैमालायनो साखामक्रायनि गगो मकलनो नायकिनि ख्लायनानि कक साखामक्रायनि गगो दिनि मकलनो काहामखे तन्नानि दैनायजों सालायनो मकलंखा सिनि साखनि नांकुकमानि मानै गायसा मकलक्रिके जों संसारो लांमा खाक्साक्रिहाय आबोनि बागै मकलनि काहाम नायगानि बेलायखेनो ख्लायना नांगौ मकलबो पद्रे पद बेमारंगै मानो गाना एबा हाकचाल नुगियां माने आबो चश्मा बाय न अजोंजा लग्न जायख्लायमान हायखेबा मकल आबगोफाखे मकल रावैबो हायखेबा अपारेशन खालायि आबोनो हामरैमान फिया आबरग्न कारै बहायन मकल गोबां मा बेमार ओंगैमान आबंखा मकल जाक्सामानि कन्जेंटिवाइटि मकल जाक्साव आब' नजों मुखसा गंगु होनायनायजों होनलायो फियाबा एलार्जि बायबो मकल जाक्सायमानो ग्लुकमा ओंगैतै गायसि मुंगैतै गायसा बेमार दङ आब' बायबो मकल जाक्साव आब'नि बागै मकल जाक्साखेनो आब' मुखसांगिया आब'नि बागै डाक्टि डाक्टि मकल चाक्साखांखे जों डक्टरनो फुनुकनानै नांगौ मकल माइग्रेन एबा भाइरास जप्रयमानो मकलनि बेमारनि नुकमारि रगनि बिसिङाव हंखायै मकल स्राय स्रायखे नुगिया जाबसा जाबसाखे नुकमाबाय गदर हामिया मकलनि बागै बादिमुं बादिमानो मकल मुंसाजों हाबखाखे एबा

0: डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने कैसा कॉक मंगो साकलाइजा जीएनएम ताई एएनएम ट्रेनिंग कोर्स ओ रंगबिसी नैसी नैसाई ताई नैसी स्नी नि अंगै कमेमलाई नहार जागै तंगो कमेमलाई रना नेपाइथ सालमरा बिसिनि जुलाई तालने साल सिसार सालमारी जरां जरां खांका फुंनि दाम सिसानि सिमि हरनि दाम सि जरानि बिसिङो अब अनलाइन तै कमेमलाई रना निनांनाय वेबसाइटिंग का www.dme.tripura.gov.in वेबसाइट हूँ रजिस्ट्रेशन फी नंबर अंडरस्टैंड में बगैर 300 एसटीएस रहने बगैर 250 उम्र नानी नंबर बीसी सी सिनी निसीमी बीसी थाम सिवानी बिशिंगो रंगमारी नानी नंबर क्लास 12 पास असुजना कॉक्टम रखना बाइक है तबु सेबगो बरकलांग माने खाना लायन
1: आउ सेबगो बरकलांग लांग माने आब्रकनि बिसिंगो दङो आईटी स्पेशलिस्ट मैनेजर अकाउंट ऑफिसर प्रोजेक्ट अबंखा त्रिपुरा हापांग भाई अबनि बागै रंगमारी बीए बीकॉम बीएससी बीसीए बीई बीटेक अबरकनि बिसिंगो ग्रेजुएट नानि नांनाय नाम्बारनि बागै करा करि ग्रै ताहि उमरंखा ब्रिजिबानि बिसिंगो नानि नांनाय ताहि खातिजाक रकनि बागै किसासेक याक उमरनि बिसि याकार मुंबो तंगानो अबनि बायथाक सालमारि चिदक जुलाइ हायखाबा तिनि नहनि मानो अबनि बागै आमजक मुं हाइकेबा इंटरव्यू रोक अब आगर तलावानो क्लाइजाकनाय ताई आबनि बागै सालमारि रोक उलो साक्लाइजाकनाय कलेटानि बिसिंति क्लाइनाय आबनि याखलो दङ अबंखा एसिस्टेंट सेक्शन अफिसार केन्द्र हापांबाय लांजाकनाय एसएससी नि बिसिंति डिपार्टमेंटल आमजक मुं रोक नि बिसिंति खैतलांजाकनाय आबनि बागै बीए बीकॉम बीएससी बीसीए बीई बीटेक ग्रेजुएट नानि नांनाय आबनि बागै उमर हंके बाजि नानि नांनाय ताई खातिजाग्रानि बागै किसासे याकार मुं दंनाय आबनि बागै सालमारि पाइथाक तिनि न हनि मानो जिदक जुलाइ कम्पिउटारनि बिसिंति खे आमजक मुं एंनाय ताई आमजक मुंनि सालमारि उलो कलेटारनि बिसिंति ख्लाय साक्लाय जाखनाय एकाशा दङ अबंखा ड्रग इन्सपेक्टर एसिस्टेन्ट इन्जिनियर केन्द्र हापंबाय तलांजानाय इउपिएससी आमजक मुंनि बिसिंति ख्लायनाय आबनि बागै बीई बीटेक पास नानि नांनाय उमर हंगांकै ब्रैजिबा नानि नांनाय खादिजा रंनि बागै किसासे याकार मुं बाहायन दङ आबनि बागै बायथाक सालमारि टिसनि नि बिसिंगो नानि नांनाय हायखाबा खाना पायथाक सालमारि आबनि बागै आमजक मुं नि सालमारि दै इन्टारभिउ नि सालमारि रक उलो कलेटनि बिसिंति साक्लाय जाखनाय
0: आव आनि याफो दङ टिपेसिन बेखते किसासे बक्सा सुथे बर सुगनानि कय मुंलाय सानजाका बक्सा सुथेंका एग्रे अफिसर बेबागै बक्सा सुथे थांगो सारा थामसि ग्रेड 1 केटागरि उतलां जाखनाय रंमारि इनाय नंनाय एग्रीबेट सिपास उमर नांनाय गोबां कुक मानिनो बिसि ब्रैसि कयमंगलाय रानानि पाइथाक सालमारि बिसिनि जुलाइ तालनि साल नैथिसार सालमारि जरा वेबसाइटिं का www.tpsc.tripura.gov.in वेबसाइट आसुजरा सेबगो बटलामानि खनालायखा ताबु हायनो खरां पांडाव रेसामुं खनालायनाय रेसामुं खरां रवानो जुलाइ देव बर्मा

0: जराय खनायनानै आमबो खाजा ते जिनिं कायसे जरा सामु खलाय माने निसिनि साक आमबो हायनो खाजा जों जेफोरबो नायनि जों फुजि खायने रखनो नायनि बरक न बरक मनुष्य बेबाक न साइन्टिफिक बेबाक न आजार बिचार खायनो बरक न कायसे जरा रजा असु उमरनि बिसिङन बरक बरकताय आसे क्राक सामु खलाय मानलिया आबन बागे बरक न रिटायर मैंने रे रहो कि अब है क्या ना बाबा बोरो रोकने शाक गठन रोकनो तुई शाक मांगनो तुई से ज्वारा खाजक तंगो हमके चिनी शामु हमु चिनी नौक ने शामु उन्थं चिनी मुखेदं कायननी माय कायननी आप लोग ने बाबा नो ज्वारा तो जंग माय बोरमानी माय तांगमानी माय रामानी माय नागमानी माइ दामानि माइ फ्रान मानि सुख मानि चक मानि आबो बेभाग न जों जरानि बिसिङ खलाय हांगाखै आबो आसक सामुं गोबां मा आबो जों जारै मानगला आबो बेभागै बेभाग ताबक जों माइ बलाय मानि जरा जराव बरि हांगा माइ फाना हामियां नाय खेताव माइ बरना जर बरना हानि नंगवान सुगै दं मानि आ जराव दै फाना करिं नाय बरक फानो माइ आंनाय हायखेबनि खेत गोजारागो हंगाखाय नों आराम सिन्तलाङै चुवाय फानो माइ आंनाय फदरा फदजों जालांनाय आमनि बागै बेबाक न जरा दङ जरानि बिसिङ बेबाक न जों सामु न बायनानै नांगौ नायनो होननानै हायनाय कक दग साबो दं हेलो
1: हेलो किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं
0: साहु बंखा अब तो हुल से रेड जाखना है कब सेब जाती फनंगई थाकाना अबने बगे हाइन हाइ करनन बगे चाय तोकती जरा जरा हो जिने या शिरक नांगई फनो बियां बियां सेब जाती इंगई थाको हेलो हेलो बलाय खना फुंका हाम बाय
2: फुंका हाम मनोबो
0: आव बलाय खनो
2: आव मो
0: I'm going to go to the house.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्री मॉनसून ऑफर्स ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो केटन
4: comes with a mileage of 24.90 km per liter, smart play studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹73,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹45,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply. Pre-monsoon offers on Maruti Suzuki Wagonr.
4: Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design, advanced K-series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
3: Get attractive offers up to ₹73,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
5: বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের তুমি অনন্যা অনুষ্ঠানে। আচ্ছা বলুন তো, শেষ কবে বলেছিলেন আমি ভালো নেই? এই কথাটা বলতে পারা সবার পক্ষে হয়তো সমান নয়। আজকে কথা বলবো আমি ভালো নেই এই কথাটা বলতে নারীরা কেন দ্বিধা বোধ করেন। ফোন করবেন 03212326253 এই নম্বরে, শুধুমাত্র কিন্তু অনন্যারা। শেষ কবে আপনার পরিবারের লোক আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিল তুমি সত্যি কেমন আছো?

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

मलाई खाना तो तक चामुङ चिङ अजरा खाना लाग्यो बुकुक पारमिटानी तै नुवाई नि खराङ बाइखे जरा तरक तरखाय दागिमुङ रे टङ्का थांनानै बागै तै नरक बाइ गोबांकुक टङै मालिया हाइनि बागै आं जतनन खाका हाम याफारै तिनिनि बागै मा बाजानाय तिनिनि सालो जतन काहाम गोरों टंबायदि तै तिनि त रथ यात्रा एबा रथ जात्रा पालायजाय दङ हास्ते गोरोंगैन नरकबो जतन काहाम गोरोंखाय तिनिनि अ सालन पालायलायदि तै आरिनि बिसिं तिके टंनानि जतनानि जायदगदि जों जरा जराव चिनि लांमाव गोबां मा केबेंमुं फायमानो हायनि बागै अमरक्न कासुथाय आबरक्न सों बाहायके एरि दंनानै नरि दंनानै आबो साक साकनो सिथाय थांदे थांदे नरक जतनि बागै दाबो कब्रक हायनावहाय दिनैनि कब्रक निउज हेडलाइन्स सायमान लायनो तिनि रथेर हा कतरबाय बाक्सा हास्त्रीय बतेर पालायजागै दङ रथेर नरगी राष्ट्र बक्रक द्रौपदी मुर्मु राष्ट्र बक्रक याक्सु सिपि राधा किशन मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी तै केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह हा कतरबाय हा कतर फातानि जत लुक्रकन खाकाहाम याफारखा मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी खोना पान्जाब बेरायमाव थांगोन बेरायमा जरा मन्त्री बक्रक जलन्धर केन्टनमेन्ट रेलवे स्टेशन चेंगिरि वाना तै अमृत भारत स्टेशन तांगबो तांगो तैब कायब्रै चिसिनि स्नाम फिरजाक रेल स्टेशन भार्चुअल तै चेंगिरि वाना खोनानि सिमि हास्तियाव चेंजागोन लुकुले खामुं नैसाय नैजिस्नि

तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ

कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।

वजरू है चमन बेचने वाले, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान।

0: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की, खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: নমস্কার প্রিয় শ্রোতা, 101.6 মেগাহার্জ আকাশবাণী এফএম উজ্জয়ন্তে এতক্ষণ আপনারা ছিলেন অনিন্দিতার সাথে। এবার আমি দেবাশিস আপনাদের সাথে থাকব রাত 11টা পর্যন্ত। আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান ইচ্ছে ঘুরি।

0: ১০১.৬ মেগাহার্জ আকাশবাণী এফএম। উজ্জয়ন্তী প্রিয় শ্রোতা, খেলতে খেলতে অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।
1: জয়, আব গরিবো কি জয় বন গই হ্যায়।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: প্রিয় শ্রোতা, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনবো দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সমাচার সন্ধ্যা।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य

0: को देखने के लिए जुटे हुए थे।
1: जगबंधु है
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: जगबंधु है।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेसो स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत

ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।